ऑसम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। लुक ये मेरा ऑसम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। अरे शादी।

अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में, तूने गुस्से में फोन मेरा काटा, तो आशिक सरेंडर हुआ।

क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी? ये दिल

0: चलोगे हमारे साथ मस्ती के सफर में? शिंगल जूस के साथ
1: कभी रेलगाड़ी में तो कभी
2: नानी के यहाँ,
0: तो कभी शेर और चूहे के साथ जंगल में, और कभी मामा के साथ मस्ती करने।
1: आइसक्रीम खाएंगे,
2: नंदी बैठकर सवाल पूछेंगे।
0: तो चलो फिर हमारे साथ शिंगल जूस की धूम चली रेलगाड़ी।
3: आपको खुश करने वाली कहानियाँ और कार्टून आज ही ले आइए आपकी मनपसंद जिंगल टून।